0: कि एक समय तम बने दे बाल में जो माता से रही तक इन फल नो नियो बोले अफेट जो वाता साउडी बाकुम्ला से नहीं ना पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.